0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है, चाहे चार है, चाहे बारह है, लेकिन दो का भी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों

0: सुभाव एक तो मैं श्रेष्ठ बनाए मिलाने की कोशिश करूं, जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो? उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो? जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी प्रमाण एक तो मैं अपनापन अनुभव कर, इसी को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना, हर एक यही सोचो सब अपने अपनापन महसूस, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया, तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कल से नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार, तो कभी अपने को निराकार बाप समान, निराकारी स्थिति में अभ्यास करो। फॉलो फादर, और कभी फरिश्ता बनकर साकार रूप भ्रमण नहीं, भ्रमण तो हो ही, लेकिन फरिश्ता रूप बन कर्म भले करो, लेकिन कर्म करते भी फरिश्ता स्थिति में रहो, तो कर्म का बोझ प्रभाव नहीं डालेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन कितना बोझ था ब्रह्मा बाप के ऊपर। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है, है कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है? वो हाथ उठाओ, कोई नहीं उठाता, कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसे रहा, कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना? तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। ये प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ, और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये कर सकते हो, कर सकते हो कि मुश्किल है? जो कर सकती है बीच बीच में, बीच बीच में ऐसी करें जो लगातार हो जाए। ये अपने कर्म के हिसाब से जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से फिक्स करो। कम से कम सारे दिन में 12 वाड़ी फरिश्ता बनो, 12 वाड़ी निराकार स्थिति में स्थित रहो। ये कर सकते हो, हाथ उठाओ, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है ना? नहीं, सहज है ना? सहज है, सहज में हाथ उठाओ, सहज है। अच्छा, करना है, करना है, ये पक्का करो। फिर तो जो लक्ष्य रखा है ना इस सीजन के अंत तक, परिवर्तन हो सकता है। अगर ये ड्रिल 24 टाइम करेंगे तो लगातार हो जाएगा, ठीक है ना? हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठाओ, हो सकता है।

जा नहीं सकते तो इनों को मुक्त करो, क्योंकि पाप आए हैं ना तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना, आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे, लेकिन सभी बच्चे तो है ना उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उनों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। इसके लिए ये ड्रिल करो, 24 वाली, 24 घंटे है, रात और दिन के 24 घंटे है, और 24 बार करना नींद नींद के

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो, परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद, परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता उठ नहीं सकते, प्यार ही आपके समय की घंटी है, प्यार की घंटी आपको उठाती है। साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरी ख्याल स्वप्न में भी आती, लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहती है मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठे उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ।

0: करते हो, बिजनेस करते हो, तो भी बिजनेस का आप ट्रस्टी हो लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर पे जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा पास बाप दादा है, ये निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बन के बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाता है। कभी प्रेम में रोते हो आंसू तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं। और आपके आंसू दिल के डबी में मोती समान समा देते। अगर कभी कभी नटखट हो के रोज भी जाते हो, रोजते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन उसे हुए को भी मनाते आते, कोई बात नहीं बच्चे आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Red Sun.

बच्चों को जब टेंशन में देखते हैं ना, तो सोचते हैं अभी अभी इस बच्चे का फोटो निकाल के भेजे, समझ जाएगा कि मैं

Esa.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है,

0: ऐसा नहीं वैसा आया, वैसा नहीं ऐसा नहीं, जो पाप ने किया कॉपी करना है बस, कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटो कॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, फोटो कॉपी है ना यहाँ। तो ये जो चित्र रखते हैं ब्रह्मा बाप का, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटो कॉपी तो करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

विश्व कल्याण गाड़ी।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अनुभूति वो करा सकेंगे जो और व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन और व्यर्थ समय कमाने वाले नहीं होंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Христи बनका अनुभव कर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाइए ना, बाप दादा खुश है। लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और जाए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सके। अभी कर ली सो कर ली, उस समय फ्रिश्ता लाइफ या अशरीरी बनने का सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम में आना है और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर सेवा भी की, लेकिन इसका अभ्यास कम होगा। सेवा में ही लगे रहे, सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहे कि अचानक होना है और ऐसी सरकमटेंस में होना है, इसीलिए बाप को लेना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार बिना बिना इशारे दे दे, सेवा का फल मिलता है। सेवा की मार्क्स, क्योंकि चार सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी, लेकिन और तीन सब्जेक्ट अगर एक सब्जेक्ट में आपने मार्क्स ले ली और तीन में कम ली तो नंबर क्या मिलेगा। चार ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चों के प्रति शुभ आश।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Anyway.

Kitchen.

всем копий. Бери.

Saranno 10. Ciao.

Ay, shit.

garçonete. Fica aí.

Amen.

ちゃん。Yes.

0: Chân ăn बहुत है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा छत्र छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमार अटल बेघरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय बिना बिना विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही था, रही ना, कोई नुकसान हुआ दुनिया वाले हंगामे में डर करके सब छोड़ करके भाग गए। जब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट भर गया सामान से, भर गया, सब सभी डर के मारे, जो अच्छी चीज लगती थी ना वो छोड़े कैसे, प्यार होता है ना उसे, तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय एंटी थे वो भी देते थे और सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए, तो आप यूज करो, हम दुनिया वालों को हंगामा था के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी, 5 रुपए में सब्जियां, कितने मजे से सब्जियां खाते थे, तो दुनिया वाले डरते थे।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

कोई भी गरम करो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कैसा भी कोई हो, लास्ट

0: सोमान है, लास्ट नंबर का भी सोमान है, कोटो में कोई तो है, प्रेसिडेंट से तो अच्छे पहचाना तो है, मेरा पापा तो कहते हैं, और सम्मान में रहो और सम्मान दो, एकता लास्ट नंबर पे एक बाबा का बच्चा है, बाबा को सामने लाओ, उसकी गलती को सामने नहीं लाओ, परिवार का है उसमें उमंग लाओ, उत्साह लाओ, चलो गलतियां भी करते हैं, बाप दादा को मालूम है क्या क्या गलतियां करते हैं, वो छिपती नहीं है, लेकिन हर एक अपने आप से पूछे, मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बना क्यों, लक्ष्य क्या, जो लक्ष्य रख के आए सिर्फ अपने को बचाने का नहीं, दाल रोटी संगठन अच्छा ब्राह्मण जीवन खिटराक से सेफ हो गए, इस लक्ष्य से नहीं है, लक्ष्य बहुत अच्छा लिया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ गए, बाप दादा को सब पता है, सिर्फ नाम नहीं लेते, कभी वो भी समय आएगा, जो करता है बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी संग दोष में बहुत है, दिल भी खाती है, करना नहीं चाहिए, लेकिन संग का रंग बाप के संग का रंग कम लगा है, इसलिए वो रंग लग जाता, बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को प्यार देख कर कहते हैं कि अपना वर्तमान और भविष्य निर्विघ्न बनाओ, संग दोष पे नहीं आओ, आज होली है ना, तो जो संग दोष में आ जाते हैं टेम्पटेशन है, संग दोष पे नहीं आओ, हद तक के प्राप्तियों के आकर्षण में नहीं है, क्योंकि बाप दादा को तरस पड़ता है कि कहता है मेरा बाबा, कहता है मेरा बाबा और करता क्या, इसलिए आज होली का दिन है, ऐसी ऐसी बातें समझदार बन के चला दो, फिर भी टॉयलेट के बोर्ड से आगे बदल जाओ, बाप दादा मदद कर अच्छा, आज होली है ना, तो बाप दादा ने भी कह दिए तरस पड़ते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आज के दिन फरश को विदाई देते हुए इंसान सकते हो। दे सकते हो, हाथ उठाओ, देनी पड़ेगी। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना उठा रही है। पुराने संस्कार को सदा के लिए हाथ उठा रहे हैं, फिर से हो।

उन सभी बच्चों को चाहे यहाँ सन्मुख बैठी है चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से क्या दे रहे हैं सभी को मस्त

be. Bab dada be money man be. Dance.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Sa

Sandbone Man.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चेक करो ज्ञान स्वरूप बनाओ या ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बनाओ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल रूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वो लाइट और माइट वाला यथारत होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है गर्भ इंद्रियोचित बनना। हर गर्भ इंद्री पर स्वराजदारी, इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। इससे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहां ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो। सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी। समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कल्पना करे, चाहे सने संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

क्या ये संकल्प

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने पहले भी सुना है कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वो है मेहनत बहुत करते। अगर दिल साफ हो जाए मेहनत
4: दिला।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Awesome.

तो कार्य करने, एक तो अपने सेवा स्थान को सदा

Princess comes on to you. आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी को. वो कमजोरी

0: स्वभाव ना से टोकरे के रूप से नहीं पूछना। स्वभाव ना से एक दो के सहयोगी बन, एक दो को
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी कहते तो है मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, जब दिल से सदा कहते हैं

मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। दूसरा मैं जो सुनाया, मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ, ये मैं मैं इसको खत्म करना, ये देव मान इस रूप में आता है। तो आज बाप दादा ने ये महीन में जो कभी विशेषता को भी मेरा मान कर मैं का भान रखते हैं, इसको समाप्त करना, देखो यादगार जो बनाते हैं उसमें भी जब बलि चढ़ाते हैं तो खुद नहीं बलि चढ़ते हैं, लेकिन किसको बलि चढ़ाते हैं? बकरे को। क्यों ढूंढा? क्यों बकरा मैं करता है? भक्तों ने काफी तो बहुत अच्छी की,

0: और शरत करके समाप्त कर सकते हो। बर्थडे पर आए हो बाप की तो कोई सौगात तो देंगे ना, तो बाप को और सौगात नहीं चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: नसीब खुश दिमाग बातें का काम है आना, ये भी समझ लो बातें नहीं आएगी, बातें आएंगी लेकिन अपना लक्ष्य में लाना है, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बना दी। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते, इसलिए सभी चाहते हैं लेकिन उनको विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है ऐसे। अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: कितने भी बीमारी हो, लेकिन बाप दादा याद है तो बीमारी कम हो जाती। जितने कोशिश
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सकता है, कभी कभी हो जाएगा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज बाप दादा सभी बच्चों

Sabika. Yo te penduro. Aquí abre sam. Sous

Ich soll 6

0: एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है। ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सेवाओं के और मंगोत्साह की मुबारक तो थी, बहुत अच्छा कर रही है, करते रहेंगे। लेकिन हर समय हर दिन आप वर्ल्ड सर्वन, आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वन, सर्वंट है तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वंट, सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है, चाहे औरों को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने भ्रमण परिवार को संपन्न बनाने के लिए। अभी इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे, सनेही सहयोगी बन हर एक सेंटर सेवा कर्म में एक दो के सदैव सहयोगी बन हर एक टेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। तभी
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बात का था एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारियों मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो, बाप की दिल कितनी है, छोटी है। जब बाप बड़ी दिल वाले हैं तो बच्चे छोटी दिल कर देते हैं, बीमार हो के तो रोना शुरू कर दे, दर्द हो गया दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी के बारे जी, जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना, तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते, इसलिए हिम्मत वाले बन, तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं आए क्या करो क्या करो, और फिर सोचो बाबा तो मदद ही है, मदद उसको मिलती है जो हिम्मत। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाप की मदद, तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करते ही नहीं, तो आती अक्षर याद नहीं करो बाबा मददगार है, लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देखते ही नहीं। पहले आप
2: अगर कुछ
1: कोई उलझन आ भी जाती है तो क्या होता है? ऐसे समय पर धैर्य शक्ति आ धैर्य

容带，这可老是不听害你就不容带，都还不如家好些。我到那，你看，啊，老公公你这，不该，你就。Yeah.

नहीं करना कि काम से

जब आप लोग खुद कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, परिवार में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी लेकिन आप ट्रस्ट।

बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, मेरा नहीं ये मेरा बन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी गिलानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करते, ये मेरा बनाता है ना तो सब बनते, मेरा जहां भी आया वहां उत्तीक का फेरा हो जाता है, बदल जाते। अगर उत्ती कहां भी बदलती है ना उलझन में, तो समझ लो ये मेरा पन, उसको चेक करो।

सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझे। इसलिए सभी बातों में ज्ञानी बनना है। दिल शिकस्त नहीं बनना, ज्ञानी बनेंगे। हाँ, ये बात है, ज्ञानी बने।

0: சமரத்துவன். Our son shows father ka part pakka karo kachang karo pakka karo and sabhi mat wale ho ye mat hai
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और ये आत्माओं को मानसिक परेशानियों से चुराने के निमित्त बनो। योग मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन की परेशानी टेंशन को जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते। तो आप सब भी मन के परेशानी के आग बुझाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, अबो में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन कुछ सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पांव वहीं चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम कर आपका है। डरना नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ होना है। डरना नहीं, खेल परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना। सब में वैराग वृद्धि उत्पन्न होनी है, रैम दिल पर सब पर शक्तियों द्वारा सकाश दे, रैम करो, समझा।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप को भी समझाने लगती है, कहती है बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अभी तो हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से ही सब करना है चलना है, तो हम है साकार और आप हो आकार और निराकार, अभी साकार में कोई तो चाहिए, अच्छा बहुत नहीं एक तो चाहिए, चाहिए ना, एक भी नहीं चाहिए, एक तो चाहिए। पीछे वाले सुनाओ, एक चाहिए, देखना बाप दादा तो कहते एक चाहिए, योग लगता नहीं है तो क्या करें, उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे, डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, अगर पेट भारी हो जाए जो पाप की आंखें उल्टी करेंगे, नहीं करेंगे तो कहां करें। कोई स्थान तो बताओ ना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

से

0: दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो सवाल के, संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते, तो बाप समझते हैं कि इस संकल्प से खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाए। चेक करो, कोई भी हमारे से नाराज नहीं, लेकिन भारी भी नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ उठाने में तो होशियार नहीं, बाप दादा खुश खुश हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत है बच्चे मदद है खुदा। जरूर मदद मिलेगी, सिर्फ इच्छा रखो बस। पढ़ना ही है, करना ही है, पुरुषार्थ ही नहीं पुरुषार्थ। बाप दादा खुश होते हैं, अभी भी देखते हैं पुरुषार्थ में बातें आते, थोड़ा कमजोर बन जाते, लेकिन नहीं, बहादुर बनो, बहादुर बनाओ। कम से कम जो रेगुलर आने वाले को दीवार पुरुषार्थ का लक्ष्य है, ऐसे नहीं है, नहीं है लक्ष्य, लेकिन बीच में कोई बातें आने से की बातें सोचते हैं, लेकिन करने में थोड़े ढीले।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सदा बाप के कंबाइंड रहना पड़ेगा, कोई भी मुश्किल आए पहुंचावे तो बाप को देने आता है, तो बेफिक्र बच्चा बन उड़ते रहेंगे। दिल में बोझ नहीं रखो। कई बच्चे कहते हैं एक मास हो गए, 15 दिन हो गए, चलता ही रहता, और उस 15 दिन में अगर आपका काला जाए तो उसी समय बोझ बाप को दे दो। देना आता है, देना जरूर सीखो, लेना तो आता है, देना भी सीखो। तो क्या करेंगे, देना सीखा है। बाप दादा आया ही किस लिए, बच्चों का बोझ लेने के लिए। कौन है जो इतनी हिम्मत रखता है, वो हाथ उठाओ। हिम्मत रखे हाथ, शरीर का हाथ उठा रहे हो या मन का?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: प्रभु तुम्हारा प्यार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: बच्चों को मधुबन में देख खुशी

Pop-Tata. Extra. Bachoke. Maname. Kushi.

मधुबन में

0: भी बाबा की बातें चलती है तो मधुबन का पावन स्थान, खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन पावरफुल, क्योंकि यहाँ विशेष छुट्टी वालों को याद दिलाया जाता है। इसलिए मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान योग धारणा और सेवा में कदम को आगे बढ़ाना तो सभी ने मधुबन का ये सब फायदा उठाए। क्योंकि यहाँ तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं अपने को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली। वर्गीकरण का भी कार्य अभी काफी टाइम चल चुका, कॉन्फ्रेंस भी चल चुकी, युद्ध यात्राएं भी चल गई। अभी कोई नई सेवा की विधि निकालो, सोचो जिसे आवाज सहज फैल जाए। अभी तक जो भी किए सेवा के प्लान बाप दादा को पसंद है और फिर दी भी हुई है, लेकिन बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स। अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप भी

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं साता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से

Ashanti, sir.

sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी से कम छे मास में अपने को जीवन मुक्त स्थिति के साधन

0: Chesky. Siva Kapi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो। यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

appreciation.

0: बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मदक को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी। शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन पर।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल चाहे संसार में चाहे ब्रह्मांड संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश हो गए, नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसकी 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, ये बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया जाता है, ये नहीं करना होता है, पहले ही बेचारा संस्कार के वश कमजोर है, तो वो नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वो परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवस आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, आप ये होगा, आपको समृद्धि दिलाई, आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ समृद्धि से आप में समृद्धि आई, परिवर्तन किया। हिम्मत से समृद्धि दिलाओ, समृद्धि समृद्धि सुते ही दिलाएंगे, समझा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जी

Thank you.

Yeah.

Poker.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी

अभी प्रैक्टिकल में है। इतना ही, अभी दीवार पर शर्ती बनना और बनाना some

इस पॉइंट के ऊपर भी वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की

वजह से एक तो मैं सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। वायुमंडल में फैलो,

0: creepy. पुरुषार्थ है दीवार पुरुषार्थ करना है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार या नेचर को नेचर दौरे की अपने अपनी है, लेकिन सर्व का सनई और सर्व बातों में सम्मतम में सफल मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इसी नेचर
3: इसी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सेवा तो करी लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती, एक तो देवान, वो तो नेचुरल सबको अनुभव है 63 जन्म का, फिर देवान प्रकट हो जाते हैं, और दूसरा है दे अपमान। देवान और दे अपमान ज्ञान में जितना आगे जाती है
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है

0: sé qué decir. Mira, papá. Islie. Papá, vi a ti, Pierre. Será papá, tata. Igual. Verse.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, एक बात का फिर से

Okay.
Fair.

fish.

0: konečný sad na mirenne vane. Hotel Wien. Vera Vrti. A vašak sadan. Šus.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

क्योंकि बाप दादा के दिल तक पर कौन बैठ

0: 就是的。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई आपसे पूछे,

0: cabeza. Ando boca arriba. Apillanteo. Ahora apcoí. Es piarca anbovel. Que jamaré. Dilme. Paprete. Or papke dilme amret. Chanteo.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगम शुभ भरत ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सिर्फ जब सेवा में कर्म योग में बहुत बिजी हो जाते हो ना तो साथ भी भूल जाते हो और फिर थक जाते हो, फिर बापू याद करते हो थक गए अभी क्या करे, थको नहीं। साथ नहीं छोड़ो

0: सियाफर सारे कलब में मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो बाप दादा भी साखी होके देखते हैं। अच्छा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जरूरी क्यों? अगर स्वप्न निश्चित है

स्वराज।

समझते लेकिन आप बच्चों को एक एक स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा हर बच्चे को स्वमानदारी बनाया, एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो तो स्व में भी इतना सदा जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्व में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहां निश्चय है ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वो तो बहुत अच्छा, लेकिन साथ में बाप के स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन एक एक स्वमान को याद करूं तो निश्चय और नशा आपके चलन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: नहीं समझती है कि हमको सेवा का चांस बहुत कम मिलता है। सेवा से

स्व रूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा। ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेंगे, पूछेंगे ये सब भाव स्वागत सेवा के लिए। जो सच्चा सेवादारी है आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय की प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा को तो जन के आएंगे। सेवादारी को चलो और कोई सेवा

से मिले मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए। ये ऐसी संकल्प स्वार्थ का चाहिए, ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं, सेवादारी हो अच्छी लेकिन नाम नहीं है आपका। लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए। और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आपके हो। क्यों? कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है। और मांग के चांस लिया वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते। ये धर्म राज का खाता कोई कम नहीं, बहुत सूखे।

Kalian kasuar.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जय छोटी।

छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको लेना दे सकते। हमारा बाप आया, आपको मालूम पड़ा हमारा बाप है, क्योंकि सबका बाप है ना। तो आपने क्यों नहीं बताया? इसलिए चेक करो अपने एरिया के चारों ओर, संदेश पहुंचे किसी को भी बेच के कम से कम बता दो पड़े कि हम सब का बाप आया है। समय अचानक आना है, पता के नहीं आएगा। अपना चारों ओर संदेश देने का कर्तव्य अवश्य देखो। मानो आपकी एरिया में कोई सेवा नहीं है, एरिया में तो जो साथी एरिया वाले उनको बता के उनको डिमिट बनाओ। कोई आत्मा रह नहीं जाए, संदेश मिलना चाहिए, बाकी अपनी एरिया को चेक करना, चाहे छोटे ही गली है, साधारण लोग है, लेकिन बच्चा तो है ना, बाप आया है ये पता तो होना चाहिए। चाहे किसी भी रीति से
mi pecho. Dijeron, hola, nana y reye, aunque no pata y neibara. ¿Qué quiere aquí tornas dijo, gana? Yoga, achanak, kuchu.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अच्छा अभी जो बाप दादा ने कहा वो हर एक एक मिनट के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का ऐसा जमा करना ही है। कुछ भी हो, कुछ नहीं देखना है, लेकिन संकल्प स्वरूप में सभी बैठो।

और शरद बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अचानक आता है, कोई भी समय

नंबर थोड़ा सा पीछे है वो बात अलग है, लेकिन अटेंशन है, परिवर्तन भी है, ये चीज करो, अलबेलापन तो नहीं आता, हो जाएगा हो जाएंगे, ये क्या बड़ी बात है, इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन। तो बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ मैजॉरिटी खुश भी है, लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं, लेकिन साथ में अटेंशन

0: लिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज की दुनिया में मेजॉरिटी आत्माएं देखने और सुनने से थक गए, लेकिन सामना करने की शक्ति।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का उमंग उत्साह है, ऐसा सर्विस तो करते हो वो तो कहने की बात नहीं है, अच्छी कर रही है, करते रहेंगे, लेकिन ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वो लिस्ट, अच्छी अच्छी है लिस्ट में, जो नाम पाला कर सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ये होमवर्क देते चाहता, ये तो मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत का अपने प्रत विधि बनावे। इन दो मास में हर एक अपना चार्ट

0: ורד שמח, ורד שקלה, כעובר, כתנה קנטרול קיה, अभी समय के परमान आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना। मन खुश, तो मन की खुशी बांटेंगे। ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का टेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त, और समर्थ संकल्प समृत समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

Ignacio. Sé que te napiares, amigo. Mato vanne vasi. Que se va con. Deca. Sapot cuchote. Lo que vi que tiene. Concha la. जैसे मशीन चल रही है तो मधुबन निवासियों की ये सेवा का भाग्य बहुत बड़ा है। मधुबन निवासी चाहे भाषण नहीं करो, सेंटर पर बैठ के मुरली नहीं सुना, लेकिन एग्जाम्पल बनना ये सबसे बड़ी सेवा है। सबको संतुष्टता का अनुभव कराना ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए मधुबन वालों से चाहे फॉरेनर्स चाहे भारत के भी आते हैं, और कहाँ भी देखो मधुबन वाले जाते हैं तो मधुबन के हर आत्मा को बहुत रिकॉर्ड से देखते हैं। सबसे मुख से निकलता है मधुबन से आई है, मधुबन से, तो मधुबन वाले

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लदा बच है। इसलिए अपने सिक्की लदे बनने के भाग्य को सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बता हुआ है। लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना, मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता, आना चाहिए।
3: कैसे आपकी आगे?
2: क्योंकि बाप चाहते हैं कि हर आत्मा आगे से आगे बढ़े। आएंगे जाएंगे, मिलेंगे, खुशी होगी, चेहरा खुशनुमा हो जाएगा और विचार खत्म हो जाएंगे। विचार करते हो ना, विचार करते हो ना, वो खुश मिजाज हो जाएंगे, क्योंकि फिर भी ज्ञान मिला हुआ है ना। खुश आप दोनों को तो ऐसा खुश रहना चाहिए जो कोई पूछे कहाँ से मिली खुशी। होना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, खुश रहेंगे ना तो प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएंगे, गारंटी है। सोचते हो ना? सोचते हो खुश रहो, खुश रहो। जितना खुश रहेंगे उतनी तबीयत भी अच्छी, और सभी देख करके भी खुश हो जाए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजा पर नहीं बोलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई आर्डर नहीं मानते। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कितना कुछ करते
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बहुत दुखी है बाप दादा को, अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहमाना चाहिए। कितना पुकारे अभी आवाज, पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय के पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुना तो सही, बेचारे बहुत पुकार रहे, जिगर से पुकार रहे, तरफ रहे। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे पुकार रहे। आपका गीत है दुखियों पर, कुछ रहम करो। स्वयं आपके कोई रहम नहीं कर सकता। इसलिए

house.

Есть это. Hey, my.

परिवर्तन कराना चाहते। जो एक ही शब्द बार बार देवर पुरुषार्थ से शारती बना देते, और अभी समय अनुसार कौन सा पुरुषार्थ चाहिए, दीवार पुरुषार्थ शब्द।

बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक। ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहिए। सोचने में, बोलने में, कर्म में आने में तीव्र पुरुषार्थ के आगे बंधन बन जाते। क्यों परिवर्तन के कार्य में साथी है। पाप के साथी है, पाप अकेला नहीं करते, बच्चों को साथ लाते। तो विश्व परिवर्तन सर्व आत्माओं के कारणों को भी निवारण।

लड़कियों का आजकल मेजॉरिटी दुखी और अशांत होने के कारण अभी मुक्ति चाहते तो शांति से साथ आप बच्चे

चर्चित चित्रों से आज तक क्या बात।

Shanti. Por ti. Dick. Sabía.

Gelato.

Shut up.

scholarship.

आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सकेंगे। अभी तो दिन प्रतिदिन आपके आगे मुक्त स्वमान की लिस्ट अपने बुद्धि में मनन करते रहो। मैं कौन लिस्ट लाऊं, इसी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी पाप दादा भी देखेंगे एक मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ ये लिखे कि इतने परसेंट सेवा की, 40%, 80%, 10%, 20%, सारा परसेंटेज लिखे, बड़ा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखे। फिर बाप दादा इनाम देंगे फर्स्ट नंबर वाले को, लेकिन बैलेंस स्व और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस, ठीक है, सब रिजल्ट लिखेंगे। सारा परसेंटेज लिखना बेटी दादी, योग युक्त दादी, लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज, क्यों टाइम नहीं होता है पढ़ने का।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: शक्तिवान के बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, दृढ़ संकल्प करना, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है?

Eva.

और इस संघ के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे थे ऊंचे वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ऊंचे पवित्र महान आत्माएं पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी प्यारा लगता।

Smoke.

0: mal, get off of me. आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आदम किसको लाख नहीं दिए, लेकिन किसानों को जानना और प्राप्त करना जीवन में समाना इसमें नंबर वार बाप दादा आजकल बार बार बिना बिना प्रकार से बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय के समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विषय

सदा करते चलो। इतने अटेंशन से

जमा कम तो पूजा भी।

0: Sampan bane, saman bane.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्यों के मन में चिंता भर रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो कि आप निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करा बना पाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करा बना करा रहा है। ये स्मृति सदा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Fresh।

ऐसे शरीर रख ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ही

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: टीचर को क्या चाहिए? सेंट्रल अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंट्रल थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की प्रणाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करे, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर चिंगिया सूता वहाँ पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते, चिंगिया सूया पाप? तो ये रायल माया ये फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है, विनाश हो जाएगा। क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं है? नंबर तो आना चाहिए, लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुना कि अगर स्टेज पर नंबर आ गया, योग्य है, चांस मिलता है, तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना भी मांगना है। चाहिए चाहिए ये रायल मांगना, चाहे स्टूडेंट है चाहे टीचर, लेकिन ये होना चाहिए। ये हमारी पहचान नहीं है, दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं है, जो आगे आती है उसको आगे कर ले। तो ये संकल्प पाना पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपके बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो जिसके कैचिंग पावर और वाणी में किसमें मिटाज होता है और किसमें स्पष्टता होती है, बोलेंगे एक बात आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात जोड़ो, सिर्फ बोल में भी किसमें मिटाज होता है, किसमें स्पष्टता होती है, किसमें कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है, तो इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन अभी फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस बार नंबर फाइनल नहीं होने, जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए, सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए, नाम हो गया सेंटर की इंचार्ज और 30 में से 15 हिल रही है, 15 ठीक है, तो क्या हुआ, वायदा की सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के 30 सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले, फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्ति रही उसी प्रमाण मिलेंगे, इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा, रोज ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ, मेरे को फिर भी नहीं मिला, अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी, तो मुख्य बात है निश्चय को, जो यथारत निश्चय है उसको पक्का करो, कहने में और पाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में टाइम पर आना चाहिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहिए।

ऐसे

मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर

そう。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ अनुभव बहुत जल्दी आगे बढ़ाता है। जैसे ये कॉल ऑफ टाइम में या पीस ऑफ माइंड में थोड़ा थोड़ा अनुभव ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें संदेश तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो भी आवे उसके पीट करके कुछ न कुछ अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है। और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचेंगे, जितना हो सके योग्य आत्माएं देख करके अनुभवी मूर्त बनाओ, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा आते रहो। आप कहेंगे नहीं आओ तो भी आएंगे। अनुभव ऐसी चीज स्वयं को भी अनुभव में पढ़ाओ, जितना जितना अनुभव में और माता निबन की सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना समस्याओं में, दादियों को भी समय देना पड़ता है और अपने को भी समय देना पड़ता है, वो समय बच जाएगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने आज

Verti, reperti. Lekin smrti svarob. Albao.

Merci.

don't know.

के स्वरूप की अनुभूति में खोजें।

0: बशारत में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा, अनुभव की अथॉरिटी इस अनुभव के अथॉरिटी का अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समय हुई रहती है, उसकी शिकिल चलन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अब तो इवा रेडियो ना, इवा रेडियो कोई भी समय आवे, कैसा भी समय आवे, लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हरेक हर समय पर सदा खुश रहे। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की खुशी गायब नहीं हो सकती।
2: अच्छा बाबा,

0: Scusamento a ti rengi, papta da risaltiki, sabine a tu te, tu same parpi, pefi kerpacha. Pefi kerpi pacha. Ese paso llegue, jese que lo que. Ese materna.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्रह्मांड परिवार सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी है। मैं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

और ब्राह्मण परिवार की तरफ से

Lord Body Wargo. Dictolia. Vabdata Samaste. Ke Abjai. Yeah.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना, कमजोर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दादी कहती थी मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते ही है। ऐसे रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लाई। तो हमसे अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखाए, सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल करम नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हाथ बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, ये तो क्योंकि बाप दादा देख। सोचो जो आप कोटो में कोई कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना, तो बाप दादा का आप बच्चों में उम्मीद है आएंगे ना, वो तो आपकी अवस्था देख करके ठीक हो जाएंगे, उन्हों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस, क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वायदा किया है साथ रहेंगे, साथी बनेंगे और साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज में आएंगे। क्या है ना वायदा, ये जब साथ रहेंगे साथ चलेंगे तो साथ में सेवा के साथी भी तो होना, मदद मिल जाएगी। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। आप सोचते हो ना, हमें कल पहले भी थे अभी भी है और हर कल हम बनना ही है, ये तो पक्का है ना कि 2 साल बनेंगे तीसरे साल जाएंगे, ऐसे तो नहीं। सदा याद रखो हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे लेकिन आप कोई में कोई।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखा है कि क्रोध के सब्जेक्ट में बहुत कम पास ऐसी समझती है, शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध क्या नहीं तो आत्मा के लिए स्वर

0: रूप भी है। वो चतुराई का रूप है, क्रोध की चतुराई का रूप है। वो क्या है? कहने में, समझने में, ऐसी समझती है, वह कहती है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां ला उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो।
1: शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अब
2: मानो
1: पहले

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता और अनुभव है सबको का आधार। उस समान स्थिति बनाने का साधन यही सहज है और ये अभ्यास अंत में नहीं बहुत काल का आवश्यक है।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

अपनापन का एहसास। अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखने चाहिए, क्यों जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से

संस्कार के स्वरूप में देखो, चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़ी समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। आत्मक भाव इमर्ज करो, जैसे शुरू शुरू में देखा संगठन में रहते आत्मक दृष्टि, आत्मक वृत्ति, आत्मा आत्मा से से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। आप इस सेवा के विस्तार में सेवा के संबंध में आत्मक भाव से चलना बोलना संपर्क में हो गए, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मर्ज हो गए। आत्मक स्वम

So.

श्रेष्ठात्मयो देवात्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ।

você. Saman sambarak meu. Harsame. Church.

0: सबसे सहज पुरुषार्थ होते हैं। सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देख पीछे आता है, जब बीत जाता है और मन को अच्छा नहीं लगता,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बार कहते हैं बाबा आज वो चैन बाबा भूल गए, बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए 63 जन्म
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मेरा मन आया कहाँ से, जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से। आप सभी तो बेनकोटी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बेनकोटी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना,
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा।
4: बहुत लोग का निमंत्रण होता है किसी को, सब कहेंगे यहाँ आया यहाँ नहीं आया।
3: नहीं, उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं करो, चल सकता है शरीर। कभी तो एकदम खराब होता है ना, वो बात दूसरी है, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सिर्फ विधि

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है, था और है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ओतामेल दे करके सारे दिन का खाली बुद्धि हो करके नींद की थके हुए आए और बिस्तर पर गए और क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा, सदा साथ रहना। अच्छा तन मन तन बाप क्यों दे दिया ना, दे दिया है। अच्छा दिल भी दे दिया, दिल बाप को दिए। अगर दिल दे दिया तो आपके पास दिल लिए नहीं है। बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे, तो बताओ जिसने दिल दिलाराम को दे दी, वो कभी किसी भी आत्माओं से दिल लगाएगा? की बातें बोल चाल या दृष्टि से वृत्ति से दिल लगी तो नहीं करेंगे। थोड़ी दिल दी है, थोड़ी और से लगाने के लिए रखिए है, दिल दे दी है। दिल नहीं लगाना, बाप की अमानत। दिलाराम को दिल दे दी, दिल लगी की कहानियां बहुत आती। तो कुमार याद रखना, ऐसे तो प्रवृत्ति वाले भी या कुमार भी, लेकिन आज कुमारों का दिन है ना, तो बाप दादा ये अटेंशन दिलाते। कभी ऐसी रिपोर्ट नहीं है, हमारी दिलाई ने बाप को दे दी तो दिल कैसे लगेंगे। शराबी अगर किसकी दृष्टि वृत्ति कमजोर हो तो कमजोर दिल को यहां से मजबूत करके जाना। इसमें हाजी है सरकमस्टेंसेस ऐसे थे, कुछ भी हो जाए, जब बाप दादा से वचन कर लिया, कितने भी मुश्किल आवे लेकिन फिर्त को नहीं छोड़ना। बाप के आगे वचन करना, वचन लेना, इस बात को भी याद रखना। कोई कैप्चर नहीं कर रहे, पर बात माँ के आगे वचन दे, कभी भी मिटाना नहीं। जन्म का व्रत किया कभी भी एक मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी, फिर भी दिल में एक मिनट वचन करो कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए।
2: छोटे बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी, चाहे शाखाएं है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। क्यों समय बदल सकते हैं। जाओ सेवा करने, लेकिन कर भी नहीं पाओ, ऐसा समय भी आने वाले। इसलिए जो करना है वो अब करो, कब नहीं। What's up?

0: le chat pas encore mais tout qui rien.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Suck.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Shannon.

Barça.

Shit.

Appreciate. Guardian. Joe.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन दीवार पुरुषार्थ

Sweet Zelensky. Is this

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

उसमें

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड है, चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते हो। पाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, तो समय में काम में लगाओ, कहने तक नहीं काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

रिजल्ट में।

Décimo.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकल, जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे सबसे बड़ा पेपर ऐसे वायुमंडल अचानक, और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त विशेषता क्या रही, दिल साफ मुरादास, किसी की भी बात दिल में नहीं रही, और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया, अलबेलाया छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी,
3: भाइयों को बुला रहे,
2: दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ, जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक नहीं, एक दो के साथी बन, ऐसा वर्तक के स्वरूप देख, फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कि बाप दादा ने सभी बच्चों

fishes.

stenar. Nej, vad det smäcker. Fishing.

Sharrat me. Sayok.

Lekin जो बीच में कोई न कोई सरकमस्टेंस इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगा check.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों की दुख की कठिनाई बड़ी वर्तन हो जाए। दिल से रहम इमर्जो क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है। इतने सभी ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रैम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती। जब करना ही
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sangam Yoga.

इस हल्के

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।